0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी भगवान से कुतु से स्वामी भगवान से उतानु से स्वामिनी भगवान से नवत वडिन से
0: एहिन प्यानी उन्वान से गे मरण्यात उत्तान्यात सीपत कर्मिन जीवन दायक पूप्यात गैलवी मदायक कुशलाना तपयु बट पुद कर्म ओबहम सिटमिन ओबट सेवे खरानट अप सुदुसान वचिन सल कीम गेन अपयु बट तुति पुदमु क्रिस्तुन महान से गे श्री सर रेटात श्री रुधि रेटात सहभागी बन अप सम शुद्धात्मन विशेन सत्कर्मु लबन लिस्स अपि अवनतवा आयद सिटिमु स्वामिनी मुल्लु वेई पेतर पवत्ना ओबगे सुदो सभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम सभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत्त ऐतुव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद ओबगे दयानुकम पावकरे विश्वासे तब मिनेस्नुवन कुत्स्यालंद सीकर ओबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयानुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमरियावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन ओबगे कमत्ते टुकल सिलु शुद्धवंतेइंद समग अपि सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदुस्सन कल मैनव तवद उन्हा समग ओबट प्रशांत सा किरीमटद ओबगे महिमय वर्णा किरीमटद ओबगे पुत्र येशुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुनु मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से करेद सियलु बलते देवी पियानने शुद्धात्मनन हा समगे क्वडवासन्ना वू ओब वहन्सेट सकल गौरवयात महिमयात।

याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।